मिलन गीते श्रीलंका चित्रपट इतिहास अतिशय विशेष मोहतक इदिरियट यऊ सावमा गाने करने इंडिया वे संगीत लोके दीप्तिमत तारका व लता मंगेशकर सिंगल बास आवे एगे हंडट तीन असीमित पिरीसुदु बव सेमिंग हादरत वेटन सुवंद में गीते अतिशय लावमत्य सिनेमा मोहतक बोट पात करला देनवा लता मंगेशकर के गायने सिंगल वचन और गलपन आयु सेमिंग गला यान संगीत सुंद पिरुनु रिद्म में सियाल लेक तुला इदिरेट यऊ सावमा आने के नाट अतिशय विशेष अद्दगी मत देनो अभी सुदान करा ए गीते में गीते संगीत सप्याने एस दर्शन मूर्ति में गीते अतुलतुना सरसुलान चित्रपट में लता मंगेशकर के सिंगल गीते इदिरेट यऊ सावमा